0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Senco se mera nata saalon purana hai.
2: Ye mere liye bas ek brand nahi hai.
3: Ye hai ek legacy. मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
4: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां,
5: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरए.
6: अब मैं क्या ही बोलूं?
7: परिवार अटूट भरोसा.
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
10: सोच बदलो और बैंक भी.

0: सर, एफएनओ का भी जो पूरा डिटेल विस्तृत डेटा सेबी के द्वारा पब्लिश किया गया है सर, उसके हिसाब से सर आपको क्या लगता है सर, कौन सी ऐसी बड़ी फाइंडिंग है जो लोगों को भी समझनी चाहिए और सेबी ने भी अच्छे से समझी है सर?
1: नहीं, जो आप एफएनओ स्टडी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, नहीं उसमें तो सारे बातें बहुत स्पष्ट हैं, और इस बार तो जो हमने स्टडी किया है उसमें हम ट्रेडिंग बिहेवियर पे भी हमने काफ़ी रिसर्च फाइंडिंग्स दी हैं कि काफ़ी 3-4 साल की ट्रेडिंग करने के बाद भी कंटिन्यूड लॉसेस में रिटेल बहुत सारे लोग हैं। तो ये जनरल मीडिया, जनरल पब्लिक को समझने की बात है कि क्या यदि वो उस मार्केट के लिए तैयार नहीं हैं ठीक तरह से, तो क्या उन्हें उसमें जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लॉसेस कंटिन्यूसली उन लोगों को मिल रहे हैं, तो क्या वो उसमें रहना चाहेंगे जहां उनके बार बार आने से भी उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा।
2: मेक योर मीडिया प्लान स्मार्टर विद इंडिया टुडे लाइव टीवी ऑन योर कनेक्टेड डिवाइसेस। Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: पहले तो जो पर्सन टू पर्सन पैसा ट्रांसफर होगा उस पर कोई चार्ज नहीं है, उसके बाद इंडिविजुअल कंज्यूमर्स पे चार्ज तब तक नहीं होगा जब तक आप एक सीलिंग जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे। जहां तक मैं समझ चुका हूं, इस यूपीआई सिस्टम को चलाना जो है वो सस्ता नहीं है। जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है उसको हम ठीक तरह से अप्रिशिएट नहीं करते। आम लोगों को इसका जो ये जो चार्जेस हैं, इसके चार्जेस आम लोगों पर ना लगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कोशिश करनी चाहिए।
1: ग्राहक के ऊपर एक भी भार नहीं पड़ेगा। सेलिंग प्राइस निर्धारित होने के बाद ही ये मर्चेंट के ऊपर लगेगा। हमको अगर उदाहरण के तौर पर 51 रुपए का माल हम खरीद रहे हैं, हमको 51 रुपए प्लस 0.4% देने की जरूरत नहीं है, हम 51 ही देंगे। ये टैक्स मर्चेंट पे पड़ेगा और वो मर्चेंट पे पड़ेगा जो जिसकी हर माह की यूपीआई इस्तेमाल करने के आधार पर 1 लाख से ज्यादा पेमेंट्स हो रही है, जो मैंने आपको बताया केवल 4%। ये कभी भी किसी तरीके से आप ग्राहक और सामान्य हमारा जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके ऊपर आप लागू नहीं कर सकते।

साथियों, हमारा प्रयास है कि भारत में फैबलेस कंपनीज की ग्रोथ हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्रिएशन भी भारत में ही हो। अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने हो, सिलिकॉन फोटोनिक्स को इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना हो, एआई एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब जरूरी है और इस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो तैयारी हो चुकी है। सप्लाई चेन की मजबूती पर भी भारत का बहुत अधिक फोकस है। इसके लिए अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। यहां जो इक्विपमेंट कंपनीज के लीडर्स हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इसका लाभ उठाने में पीछे मत रहिएगा। केमिकल, गैसेस और मटेरियल्स के लिए उसके लीडर्स के लिए भी भारत में सुनहरा अवसर उनका इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम एक साथ ग्रो करे। इसके लिए डिमांड पाइपलाइन भी तैयार है। अभी तक 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है और नेक्स्ट फेज में ये दायरा और बढ़ेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
2: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
3: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
4: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
5: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ।
6: अब मैं क्या ही बोलूं?
7: परिवार अटूट भरोसा।
8: यार लोन भूल गया मैरी।
9: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना,
10: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
8: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
10: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
11: There's nothing small about them.
12: Oh, Jeevan, nothing small about us.
0: No matter what your day throws at you, stay in the spot.

0: lot of people take xylem husk for fiber.
1: Yes.
0: And?
2: अगर चिया सीड जितनी मार्केटिंग xylem husk की हो जाए तो इंडिया की गट प्रॉब्लम्स काफी सारी सॉल्व हो जाएंगी.
3: हो जाए. मुझे लगा आप कहेंगे वैरायटी होनी चाहिए फाइबर में, रोज रोज नहीं खा सकते आप पीस ऑफ गोल.
1: सी एज अ डॉक्टर, मेडिसिनल यूज किसी भी चीज का हो, आई विल नॉट रिकमेंड विदाउट टॉकिंग टू योर डॉक्टर, बट इसबगोल इज साइलियम हस्क इज द सुपरमैन फॉर फाइबर, प्रोवाइडेड डन राइट, हैड विद एटलीस्ट 3 glasses ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट 3 liters ऑफ वाटर इन अ डे. आइडली एड अ प्रोबायोटिक टू इट विद कर्ड
3: बिफोर मील आफ्टर मील,
1: 7 to 9 के बीच में, डिनर के 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद. और दवाई ना ले अपने बीपी और एंटीकोगुलेंट्स, अगर हार्ट पेशेंट हैं तो ब्लड थिनर चल रहे हैं वो सब उसके आसपास ना लें, क्योंकि वो जेल बनाता है, सॉल्युबल फाइबर है पेट में, तो डिले करता है अब्सॉर्प्शन. पता लगा आपको एंटीकोगुलेंट चल रहे हैं, आपको हार्ट अटैक आ गया, तो दवाई 4 घंटे पहले और बाद में ना लें. और एक ब्रेथ टेस्ट करवा लें, क्योंकि अगर आपको सीबो जैसी प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ग्रोथ, क्योंकि वो पेट में जाके एकदम से बना रहा है ना, जेल बना रहा है, और क्योंकि वो जेल बना रहा है आप उसे पानी दोगे तभी वो बाइल एसिड को अब्सॉर्ब करेगा, बाइल एसिड को एक्सक्रीट करेगा, तभी आपका लिवर एलडीएल को खींचेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को और बाइल एसिड में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन को कम करता है, डायबिटिक्स के लिए सब गोल बहुत अच्छा होता है, डिले करता है ना मामले को, ठंडा कर देता है. जैसे आपकी किसी से लड़ाई हुई तो समझदार आदमी कहता है लेट्स स्लीप ऑन इट टुनाइट, आई विल नॉट रिएक्ट टुनाइट, कल सुबह बात करें. जो जेंजी होता है वो उसी रात को भिड़ जाता है, मतलब सब कुछ लेके, तो इसबगोल कूल्स इट डाउन फॉर अ टाइम. सो तो वी हैव टू बी स्मार्ट, बिकॉज फाइबर इज फॉर योर गट बैक्टीरिया, एंड गट बैक्टीरिया आर द फ्यूचर ऑफ हेल्थ.

0: सर एफएनओ का भी जो पूरा डिटेल विस्तृत डेटा सेबी के द्वारा पब्लिश किया गया है सर, उसके हिसाब से सर आपको क्या लगता है सर, कौन सी ऐसी बड़ी फाइंडिंग है जो लोगों को भी समझनी चाहिए और सेबी ने भी अच्छे से समझी है सर?
1: नहीं, जो आप एफएनओ स्टडी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, नहीं उसमें तो सारे बातें बहुत स्पष्ट हैं, और इस बार तो जो हमने स्टडी किया है उसमें हम ट्रेडिंग बिहेवियर पे भी हमने काफ़ी रिसर्च फाइंडिंग्स दी हैं कि काफ़ी 3-4 साल की ट्रेडिंग करने के बाद भी कंटिन्यूड लॉसेस में रिटेल बहुत सारे लोग हैं। तो ये जनरल मीडिया, जनरल पब्लिक को समझने की बात है कि क्या यदि वो उस मार्केट के लिए तैयार नहीं हैं ठीक तरह से, तो क्या उन्हें उसमें जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लॉसेस कंटिन्यूसली उन लोगों को मिल रहे हैं, तो क्या वो उसमें रहना चाहेंगे जहां उनके बार बार आने से भी उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा।

0: I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima business privilege, rdf, there's nothing small about them.
0: okay.
1: oh jeevan, nothing small about us.
2: senko se mera nata saalon purana hai. ye mere liye bas ek brand nahi hai,
3: ye hai ek legacy. mere shaadi ke kangan senko se hi liye the,
4: kyunki aise barik karigari aur kahan. isliye senko india ka amongst most trusted jewelry brand as nominated by the TRF.
3: ab main kya hi bolu.
5: parivar atoot bharosa.
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
8: सोच बदलो और बैंक भी.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: पहले तो जो पर्सन टू पर्सन पैसा ट्रांसफर होगा उस पर कोई चार्ज नहीं है, उसके बाद इंडिविजुअल कंज्यूमर्स पे चार्ज तब तक नहीं होगा जब तक आप एक सीलिंग जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे। जहां तक मैं समझ चुका हूं, इस यूपीआई सिस्टम को चलाना जो है वो सस्ता नहीं है। जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है उसको हम ठीक तरह से अप्रिशिएट नहीं करते। आम लोगों को इसका जो ये जो चार्जेस हैं, इसके चार्जेस आम लोगों पर ना लगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कोशिश करनी चाहिए।
4: ग्राहक के ऊपर एक भी भार नहीं पड़ेगा। सेलिंग प्राइस निर्धारित होने के बाद ही ये मर्चेंट के ऊपर लगेगा। हमको अगर उदाहरण के तौर पर 51 रुपए का माल हम खरीद रहे हैं, हमको 51 रुपए प्लस 0.4% देने की जरूरत नहीं है, हम 51 ही देंगे। ये टैक्स मर्चेंट पे पड़ेगा और वो मर्चेंट पे पड़ेगा जो जिसकी हर माह की यूपीआई इस्तेमाल करने के आधार पर 1 लाख से ज्यादा पेमेंट्स हो रही है, जो मैंने आपको बताया केवल 4%। ये कभी भी किसी तरीके से आप ग्राहक और सामान्य हमारा जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके ऊपर आप लागू नहीं कर सकते।
5: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: साथियों, हमारा प्रयास है कि भारत में फैबलेस कंपनीज की ग्रोथ हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्रिएशन भी भारत में ही हो। अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने हो, सिलिकॉन फोटोनिक्स को इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना हो, एआई एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब जरूरी है और इस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो तैयारी हो चुकी है। सप्लाई चेन की मजबूती पर भी भारत का बहुत अधिक फोकस है। इसके लिए अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। यहां जो इक्विपमेंट कंपनीज के लीडर्स हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इसका लाभ उठाने में पीछे मत रहिएगा। केमिकल, गैसेस और मटेरियल्स के लिए उसके लीडर्स के लिए भी भारत में सुनहरा अवसर उनका इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम एक साथ ग्रो करे। इसके लिए डिमांड पाइपलाइन भी तैयार है। अभी तक 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है और नेक्स्ट फेज में ये दायरा और बढ़ेगा।
1: You are watching India Today.
2: Good morning and thank you for tuning into India Today. I'm Suesha Sawant. We begin with the top headlines we're tracking for you this Friday morning. EC freezes TMC party symbol, bars both TMC factions from using the party symbol and its name in West Bengal by polls. Both factions have been asked to submit 3 choices each of party names and 3 symbols. Rahul on his way out at EC over TMC symbol fight, says vote chori, government chori, now party chori. BJP attacks Mamata Banerjee, calls EC order divine justice. Disha Salian case reignites political war. Uddhav Thackeray breaks silence, claims character assassination. Aditya Thackeray denies knowing her. Disha's father sues Aditya for 5,000 crore rupees. Another Mumbai eatery faces the axe. FDA action against Olympia Coffee House. License of 108-year-old outlet suspended. Odissi stars had chai, bun, masca everywhere and grave food safety violations that have been flagged there. Urinal found at food storage area. Board battle intensifies. Chandrasekaran gets 5-year extension. Board backs Chandra. Noel pushes back Tata Trust to challenge Chandra's term. Board sets IPO plan in motion. Noel Tata opposes, seeks alternatives first.

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: टाइप फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: फाइव डिस्टिंक्ट फेसेस, वन कॉमन पर्पस, इंडिया इन्फॉर्म्ड एंड अहेड, वेयर द साउथ फाइंड्स अ वॉइस, सुपर सिक्स, शार्प क्वेश्चंस, जीरो डिस्ट्रैक्शंस।
4: यू ऑल्सो स्पीक ऑफ पुअर चिल्ड्रन, Kangana ji, one can always draw analogies sitting high in ivory towers.
3: To the point, the nation's agenda, nothing else matters.
5: There are some who say Pakistan may not be on the verge of breaking up. Pakistan army is unable to control the situation.
3: India first, where decades of experience speaks.
6: So you want to raise your voices, but what do you want to see?
3: News Today, exclusives that shape the headlines.
7: Southern states all unite saying that this is unfair on them.
3: News Track, every defining moment, every story that matters. The team that always speaks for you, because you matter.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू सोच बदलो और बैंक भी।
2: सर एफएनओ का भी जो पूरा डिटेल विस्तृत डेटा सेबी के द्वारा पब्लिश किया गया है सर, उसके हिसाब से सर आपको क्या लगता है सर, कौन सी ऐसी बड़ी फाइंडिंग है जो लोगों को भी समझनी चाहिए और सेबी ने भी अच्छे से समझी है सर?
3: नहीं, जो आप एफएनओ स्टडी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, नहीं उसमें तो सारे बातें बहुत स्पष्ट हैं। और इस बार तो जो हमने स्टडी किया है उसमें हम ट्रेडिंग बिहेवियर पे भी हमने काफ़ी रिसर्च फाइंडिंग्स दी हैं कि काफ़ी 3-4 साल की ट्रेडिंग करने के बाद भी कंटिन्यूड लॉसेस में रिटेल बहुत सारे लोग हैं। तो ये जनरल मीडिया जनरल पब्लिक को समझने की बात है कि क्या यदि वो उस मार्केट के लिए तैयार नहीं हैं ठीक तरह से तो क्या उन्हें उसमें जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लॉसेस कंटिन्यूसली उन लोगों को मिल रहे हैं, तो क्या वो उसमें रहना चाहेंगे जहां उनके बार बार आने से भी उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा।

0: Dipesh, I want to come back to you on this one. Do take us through the details of what the raid at the coffee house revealed and what next. So right now it stands shut until changes are made. Any word from them?
1: The raid took place on 16th of September by the FDA officials on the Olympia restaurant, which is located in Colaba of Mumbai. And it is one of the most iconic restaurants of the Mumbai, nearly a century year old restaurant, where many celebrities, not only from the India or from the Hollywood, but from the Bollywood as well, have visited that place. And when FDA officials raided that place, they found certain hygiene lapses in the kitchen, especially when the way the food was carried out, the food was made, that was totally unhygiene. Which was found by the FDA officials. They suspended the license of the Olympia restaurant till the further notice, and they have asked to take the precautionary measures which was set by the FDA. They found that the drinking water was not in a proper way. Also, they found that 34 their workers out of 35 have not taken the food safety training measures, due to which the food safety and food hygiene was lacking, according to the FDA officials. So they have asked Olympia restaurant owners and management to correct the measures and to take the necessary action, which was suggested by the FDA, and they can again reapply to restore their license. But till now, the license has been suspended and the shop has been closed. We visited that place in the morning as well, and we have saw that notice was placed by the hotel management, and they have said that for the corrective measures, for the maintenance purposes, the hotel is shut down till the further notice. So we have to see that how many days it will take to Olympia management to correct the measures or to follow the guidelines which was set by the FDA.
0: All right, Dipesh, many thanks for getting us those details. We wait and watch how the action continues. Moving on, at the India Today Kerala conclave, Kerala Chief Minister V.D. Satheesan, who made his position very clear on the sexism row in the state. He condemned the sexist remarks made by Muslim cleric Kantapuram Abu Bakar Muslayar with a clear message: equality cannot take a backseat to politics.
2: मगर आपने पहली बार एक ऐसा नेता देखा होगा जो पढ़ता भी नहीं है जो वो लिख देता है. मतलब एनसीपी और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस वर्ड लिखते हुए उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये तो सारा आरोप कांग्रेस के ऊपर आ जा रहा है. और फिर जब वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि इसको निपटा दिया, उसको निपटा दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने किसको निपटाया है? अरे राहुल गांधी जी, आपको अपनी पार्टी का नया इतिहास पता हो तो परिवार का इतिहास पता कर लीजिए. 1963 में, अब मैं देख रहा था, मतलब थोड़ी सी मेरी आदत है कई बार चीजों को पुराना ध्यान रखने की, तो अगर आप देखें तो क्या क्या नहीं है, इतनी सारी चीजें हैं 1963 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को. आपकी तो पार्टी अद्भुत है. भारत के इतिहास नहीं, शायद दुनिया के इतिहास की इकलौती पार्टी होगी जब 1969 में नीलम संजीव रेड्डी जी के राष्ट्रपति के चुनाव के मुद्दे पे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करवा दिया. मतलब पार्टी का सर्वोच्च नेता अपने खिलाफ वोट करवा दे और उस कुल में उद्भूत, मतलब क्या कहा जाए, वो कुल के क्या है, ये निर्णय तो कांग्रेस के ऊपर छोड़ देना चाहिए. श्री राहुल गांधी जी को यही नहीं पता है कि मेरे परिवार ने क्या क्या कमाल किए हैं. और आपने मजेदार बात देखी होगी, मात्र 3 साल पहले अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे, अभी 2-3 महीने पहले अशोक गहलोत जी का बयान है कि मुझे बनने नहीं दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, निपटा दिया गया. किसने निपटाया? और मजे की बात, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे वो बागी खेमे में हो गए. ऐसे अद्भुत उदाहरण. अब आप देखिए, जनता पार्टी की सरकार बनी चौधरी चरण सिंह जी के साथ, धोखा किसने किया? भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण कि चौधरी साहब को समर्थन दिया और सत्र को फेस करने से पहले समर्थन वापस ले लिया. हरियाणा में 1980 में लोक दल का विलय, आपको याद हो चिमन भाई पटेल 1990 पूरा का पूरा जनता दल अपने अंदर समा ले गए. अरे राहुल गांधी जी अभी राजस्थान में 2009 में और 2018 में आधा दर्जन हाथी निकल गए थे, आप 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी के थे, आपको बिना शर्त समर्थन दे रहे थे। मतलब यह भी जरूरत नहीं थी कि आपको अपनी उनका समर्थन लेना था, अपनी समर्थन दे रही पार्टियों को निगल ले गए। और पूरे देश को पता है कि 1983 में जब राजीव गांधी जी हैदराबाद गए थे तो तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री टी अंजैया जी के साथ किस ढंग का अपमानजनक व्यवहार हुआ था, उनके लिए बफून जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। ये सारी बातें मीडिया में और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और उसके बाद जब एनटी रामाराव जी की सरकार बनी, तेलुगु देशम की सरकार, तो जिस समय वो इलाज कराने गए थे उनकी पार्टी को निपटाने का काम किया। और फिर क्या क्या बोला जाए वो बहुत लंबी फेरिस्त हो जाएगी कि 1984 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में विभाजन करा के कांग्रेस ने तोड़फोड़ की, कर्पूरी ठाकुर जी के बिहार का लोकदल का विभाजन कराया, चंद्रशेखर जी की सरकार को वीपी सिंह से अलग होकर चंद्रशेखर जी की सरकार को समर्थन दिया और मात्र 3 महीने में उस सरकार को गिरा दिया 1991 में। फिर असम गण परिषद को जिस प्रकार से डिस्टेबलाइज किया 1990 में। और कुछ एक चीजें तो कांग्रेस ने इतनी महत्वपूर्ण की हैं जो भारत के संवैधानिक इतिहास में अभूतपूर्व बन गई हैं। और राहुल गांधी जी को यदि नहीं पता है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष रहने की तो छोड़िए, कांग्रेस का नेता रहने की योग्यता नहीं रखते, जिसको अपनी पार्टी का इतिहास ना पता हो। एसआर बोम्बई केस 1989 में एसआर बोम्बई जी की सरकार को बर्खास्त किया गया डिस्पाइट ही वाज हैविंग क्लियर मेजॉरिटी, और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजेस की संविधान पीठ ने निर्णय दिया 1994 में कि अब आगे से किस सरकार का बहुमत है यह सिर्फ सदन के पटल पर तय होगा, यह किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं हो सकता, चाहे वह व्यक्ति राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति ही क्यों न हो। भारत के इतिहास में यदि सदन के पटल पर पैसा लेकर वोटिंग करने का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बाकायदा अपराध साबित हो जाने का निर्णय है तो 1993-94 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों को अपने साथ मिला लिया था पैसा देकर, और बाद में मगर चूंकि उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती थी कि एक न्यायिक इम्यूनिटी है, अब उसको इम्यूनिटी को न्यायालय ने हटाया है। फिर देवगौड़ा जी की सरकार किसने गिराई? कांग्रेस ने। फिर गुजराल साहब की सरकार किसने गिराई? कांग्रेस ने। मतलब चौधरी चरण सिंह जी की सरकार गिराई कांग्रेस ने, चंद्रशेखर जी की सरकार गिराई कांग्रेस ने, देवगौड़ा जी की सरकार बनाई कांग्रेस ने, गिराई कांग्रेस ने, गुजराल जी की सरकार गिराई कांग्रेस ने, बनाई भी इन्होंने और गिराई भी इन्होंने। यानी यह दर्शाता है, और कुल मिलाकर भारत के संवैधानिक इतिहास में अपनी चुनी हुई सरकारों में 1997 तक, जब तक अटल जी की सरकार आई 98 में, उससे पहले सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के किसी दल को अपना कार्यकाल चुनी हुई सरकार को राज्य में पूरा नहीं करने दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए कि अब जिस जमाने के जो आर्काइव्स अवेलेबल हैं डी क्लासिफाइड आर्काइव्स के जीबी के, उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार की हैसियत नहीं थी कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को डिसमिस कर दे। जब हैसियत थी तो नंबूदरी पाद जी की सरकार को डिसमिस कर दिया था। और 1980 में जब सत्ता में आए 9 राज्यों में विपक्ष की सरकारों को इस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया कि आपकी पार्टी केंद्र में चुनाव हार गई है, इसलिए अब उसे राज्य में सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी कान खोल के आंख फाड़ के देखें और कान खोल के सुने, आपने 9 गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए डिसमिस कर दी कि आप कह रहे हैं क्योंकि सेंटर में हम जीत गए हैं तो आपको स्टेट में रूल करने का अधिकार ही नहीं है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो ऐसे ऐसे लोगों को खाया है, राहुल गांधी जी को पता नहीं है। अच्छा, अपने दौर का ही याद रख लेते, कितने तो मुख्यमंत्रियों को खा गए। अगर आप देखें तो केवल राज्यों के सीएम की बात कर रहा हूं, गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे असम के, विजय बहुगुणा जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड.
0: यू हियर हाउ द बीजेपी इज अपिंग द एंटी अगेंस्ट राहुल गांधी. देयर काउंटर अटैक आफ्टर व्हाट राहुल गांधी सेड ऑन द टीएमसी वॉर सिंबल. वी विल कंटिन्यू टू गेट यू द वेरी लेटेस्ट. फॉर द मोमेंट अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. ऑन द अदर साइड आवर स्पेशल सेगमेंट सो साउथ, वेयर यू गेट टू वॉच ऑल दैट इज मेकिंग न्यूज डाउन साउथ. डू स्टे ट्यून्ड टू इंडिया टुडे.

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
4: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
5: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां,
6: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
7: अब मैं क्या ही बोलूं?
8: परिवार अटूट भरोसा।
9: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
10: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
9: स्मॉल बैंक?
10: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, H current account business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
9: Okay.
10: Ujjivan, nothing small about us.
11: So you're the people's choice.
12: I'm not saying that. I'm
11: the Gen Z choice.
12: I'm the party's choice. Party selected me. We spoke to all the leaders, the community leaders. Don't speak communalism. If you have votes in your pocket, you keep it in your pocket. Don't speak communalism.
9: Pookie CM.
11: Pookie CM. Pookie CM you're called.
12: I know their vocabulary. I can interact with them easily.
11: You like to be called a Pookie CM?
12: Pookie means that is a cute. That means cute. Everybody likes it. I also like it.

0: पहले तो जो पर्सन टू पर्सन पैसा ट्रांसफर होगा उस पर कोई चार्ज नहीं है, उसके बाद इंडिविजुअल कंज्यूमर्स पे चार्ज तब तक नहीं होगा जब तक आप एक सीलिंग जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे। जहां तक मैं समझ चुका हूं, इस यूपीआई सिस्टम को चलाना जो है वो सस्ता नहीं है। जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है उसको हम ठीक तरह से अप्रिशिएट नहीं करते। आम लोगों को इसका जो ये जो चार्जेस हैं, इसके चार्जेस आम लोगों पर ना लगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कोशिश करनी चाहिए।
1: ग्राहक के ऊपर एक भी भार नहीं पड़ेगा। सेलिंग प्राइस निर्धारित होने के बाद ही ये मर्चेंट के ऊपर लगेगा। हमको अगर उदाहरण के तौर पर 51 रुपए का माल हम खरीद रहे हैं, हमको 51 रुपए प्लस 0.4% देने की जरूरत नहीं है, हम 51 ही देंगे। ये टैक्स मर्चेंट पे पड़ेगा और वो मर्चेंट पे पड़ेगा जो जिसकी हर माह की यूपीआई इस्तेमाल करने के आधार पर 1 लाख से ज्यादा पेमेंट्स हो रही है, जो मैंने आपको बताया केवल 4%। ये कभी भी किसी तरीके से आप ग्राहक और सामान्य हमारा जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके ऊपर आप लागू नहीं कर सकते।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: ए यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: You're watching India Today, and we are starting this bulletin with breaking news that's coming in on the Nitari case. In the infamous Nitari case, Surendra Kohli commits suicide by hanging. Remember, Kohli was residing in the Bhupatwala area of Haridwar city, Kotwali. The police have now taken the body into custody and initiated an investigation. Surendra Kohli had been running a tea stall in Bhupatwala area for the last few days. Remember, this is the man who was first convicted, then acquitted in the horrific Nitari murder case where dozens of children were found, dead bodies were found, but finally the courts questioned the investigation. The courts questioned how exactly the investigation had happened, how the skeletal remains had been found. But remember, in 2009, Kohli had been convicted in first of the 13 trials and had been sentenced to death. But he filed a curative petition. He went all the way up to the Supreme Court, which effectively cleared Kohli of all the charges after almost a decade, more than a decade, in fact, in jail. The court noted that the recoveries, the investigation, all of them were under question. Critical evidence had not been collected properly. And with all of that, the Supreme Court had acquitted Kohli, had cleared all charges against him in November 2025. Kohli was released from jail and now he had been living in Haridwar, where he has now committed suicide. Remember, this case had raised a lot of serious questions about investigation, about access to the crime spot and the way investigation was done. Ankit Sharma is joining me on this story. Ankit, what can you tell us about this shocking development? Surendra Kohli, who was acquitted in November, has now committed suicide.
1: Well, yes, Surendra Kohli was acquitted in Nitari case in 2025. And since then, there were no whereabouts of Surendra Kohli so far. And now, today, we received an information that a person has been found dead at his tea stall near Lal Mata Mandir in Bhupatwala area of Haridwar. And according to sources, just 3 days ago, he had opened the shop, and earlier, he was living in Sidkul area for the last 1 year in Haridwar area as well. So now it lies on the investigation whether it is a murder or it's a suicide. That totally depends on the police investigation. The police has taken the body in the custody, and so far the postmortem is underway. And after the medical reports, police will proceed its investigation, and we will get to know the main reasons behind his death.
0: Ankit, stay on with me. I'm also being joined by Arvind Ojha on this story. Arvind, Surendra Kohli has committed suicide, allegedly committed suicide, nearly a year after he was cleared of all charges by the Supreme Court. What can you tell us about his whereabouts for the last 11 months? What can you tell us about the investigation in the alleged suicide case so far?
2: देखिए, जब ये बरी हुआ था सुरेंद्र कोहली, उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गया था, किसी के बारे में उसे जानकारी नहीं थी. अब कुछ देर पहले जो हमारी बात हुई, इंडिया टुडे ने बात भी की है, जो SHO हैं हरिद्वार के कोतवाली के, उन्होंने बताया कि लगभग 11:30 बजे सुबह कॉल मिली थी कि एक शख्स है, उसने एक खोखे में, एक छोटी शॉप वहां पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. जब पुलिस वहां पर पहुंची तो आईडी कार्ड चेक किया गया और उसमें आधार कार्ड मिला जिसमें सुरेंद्र कोहली नाम लिखा हुआ था, और फिर वो मैच कराया गया तो ये पता चला कि ये वही सुरेंद्र कोहली है जिस पर निठारी कांड में आरोप लगा था और कई साल वो जेल में रहा. जानकारी ये भी मिली है कि 3 दिन पहले उसने ये चाय का छोटा सा खोखा शॉप वो ओपन किया हुआ था और वहां पर रह रहा था, गुमनामी की जिंदगी जी रहा था वो. लेकिन आज जो 11:30 बजे कॉल मिली है, जब लोकल लोगों ने कॉल किया तो पुलिस वहां पर पहुंची रस्सी से वो लटका हुआ था, उसके बाद फिर उसको बॉडी को उतारा गया पोस्टमार्टम के लिए, और जब उसकी आईडी चेक की गई तो उसमें सुरेंद्र कोहली का आधार कार्ड भी मिला है। तो पुलिस फिलहाल बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाएगी, जिससे असली जो कॉज ऑफ डेथ है वो सामने आएगा, लेकिन अभी इसको सुसाइड मानकर ही जो हरिद्वार पुलिस है वो चल रही है।
0: अरविंद एक बात बताइए, जैसे कि आपने कहा आधार कार्ड मिला है, पर ये एक्चुअली सुरेंद्र कोहली है कि नहीं, क्या हुआ, किस हालात में वो हरिद्वार पहुंचा, उसके बारे में क्या कोई इन्वेस्टिगेशन ओपन की गई है?
2: देखिए, इसीलिए हमने वहां के जो एसएचओ हैं उनसे बातचीत की है, फोन पर हमने उनका इंटरव्यू किया है, जिसमें हमने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या ये वही सुरेंद्र कोहली है जो निठारी कांड में था, जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि हमने जो आईडी कार्ड बरामद की है, आधार कार्ड।
0: अरविंद मेरे साथ बने रहिए, जस्ट स्टे ऑन विद मी, लेट्स आल्सो लिसन टू द कन्वर्सेशन दैट अरविंद ओझा जस्ट हैड विद द एसएचओ ऑफ हरिद्वार थाना, लेट्स लिसन इनटू दैट कन्वर्सेशन।
3: ये जानकारी मिली है कि भूपा थाना क्षेत्र में एक खोखे में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली
4: जी।
3: जब उसकी आईडी वगैरह चेक की तो सुरेंद्र कोहली नाम का व्यक्ति वहां फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था।
4: अच्छा, तो ये चाय का खोखा कब खुला था? और
3: तीन दिन पहले।
4: अच्छा, तो क्या ये कन्फर्म है कि सुरेंद्र कोहली वही है जो निठारी कांड का आरोपी था?
3: इसके बाद जो आईडी मिली है वही आईडी उसी के नाम की मिली है
4: जी,
3: और फोटो भी उसी की है
4: जो मैच करती है
3: जी। जी,
4: कितने बजे की ये कॉल रही होगी, क्या इसके साथ कोई रहता है?
3: 11:30 बजे इसकी सूचना मिली थी।
4: अच्छा, और फांसी किस चीज से लगाई है सर?
3: रस्सी से।
4: रस्सी मतलब पंखे से, किस चीज से?
3: रस्सी से ऊपर बात की।
4: अच्छा, शुक्रिया सर।
0: All right, Ankit is still with me on this story. Ankit, you were telling us about the investigation, about the FIR and the body being found in Haridwar. Tell us more about what we know so far.
1: Well, the police has taken the body into its custody and the investigation has begun. But the question lies on the postmortem, whether this is a suicide case or there's a conspiracy behind his death. So far, the primary photos which we have received and which we have also aired shows that a rope is being tied on his neck, and the police also says that he was found hanging in his shop. Mere 3 days ago, he had opened this shop, and our sources say that he was earlier living in Sidkol area of Haridwar, and we are yet to actually locate his exact place where he was living in Sidkol, and what was the primary intention that he shifted to Haridwar, and how he was living, that will be unearthed in the time to come. But this shocking revelation which has come to light is the main accused of Nithari case, who was acquitted in 2025, is found dead, and the primary situational circumstantial evidence shows that this is a suicide case. However, the police investigation has begun, and the postmortem will tell the further story.
0: All right, Ankit, stay on with me. Let's also go across to Arvind Ojha, who's continuing to be with us. Arvind, आप बता रहे थे कि किस तरह से investigation open की गई है, क्या जानकारी है, बताइए।
2: देखिए, ये जो पूरा मामला है, सबसे बड़ी बात है कि सुरेंद्र कोहली को किसी को भी नहीं पता था हरिद्वार में कि सुरेंद्र कोहली, जिस पर नोएडा के निठारी कांड का इतना बड़ा आरोप लगा था, उसको जेल, कई साल वो जेल में रहा, उस पर बहुत संगीन आरोप लगे थे, वो बरी होने के बाद हरिद्वार में गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। एक चाय की छोटी सी शॉप उसने खोली है, ये भी जानकारी मिली कि अभी 3 दिन पहले ही उसने ये शॉप ओपन की थी, और वहां आज 11:30 बजे जब पुलिस को ये जानकारी मिली कि एक शख्स ने सुसाइड कर लिया है, जब पुलिस वहां पर पहुंची तो जो चाय की छोटी सी शॉप है उसके बैक साइड में वो रस्सी से लटका हुआ मिला। उसके बाद जब आईडी चेक की गई तो ये कंफर्म हुआ कि सुरेंद्र कोहली है, वही सुरेंद्र कोहली जो निठारी कांड में आरोपी था, और वो आईडी कार्ड भी हमने निशा वो एक्सेस किया है, पुलिस से हमने मांगा था, वो एक्सेस किया, उसमें नाम आधार कार्ड में सुरेंद्र कोहली का लिखा हुआ है और तस्वीर भी वही है। अब पोस्टमार्टम से ये क्लियर होगा कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या है, लेकिन फिलहाल जो प्राइमा फेसी है, पुलिस इसको सुसाइड मानकर ही चल रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरी किया था उसके बाद काफी दिनों तक ये अंडरग्राउंड था, वकील से कांटेक्ट में था, उसके बाद चूंकि मीडिया भी इससे बातचीत करना चाहती थी तो ये अपने गांव भी नहीं गया, विलेज भी नहीं गया, एक गुमनामी की ये जिंदगी जी रहा था। और किसी को भी नहीं मालूम था कि हरिद्वार में है, हरिद्वार में इसने चाय की शॉप 3 दिन पहले खोली है और इतने बड़े कांड का आरोपी खुद इस तरह से सुसाइड कर लेगा।
0: जी थैंक यू वेरी मच अरविंद ओझा एंड अंकित फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस स्टोरी। सुरेंद्र कोहली हु हैड बीन कन्विक्टेड एंड देन अक्विटेड in the horrific Nithari murder case has now been found dead. Investigation, as Arvind Oja was just saying, is going to be happening into what happened really, how did he reach Haridwar and what has really happened. But it's time now for us to take a very short break. More news and updates will continue on the other side. Keep watching India Today.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: सर एफएनओ का भी जो पूरा डिटेल विस्तृत डेटा सेबी के द्वारा पब्लिश किया गया है सर, उसके हिसाब से सर आपको क्या लगता है सर, कौन सी ऐसी बड़ी फाइंडिंग है जो लोगों को भी समझनी चाहिए और सेबी ने भी अच्छे से समझी है सर?
1: नहीं, जो आप एफएनओ स्टडी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, नहीं उसमें तो सारे बातें बहुत स्पष्ट हैं, और इस बार तो जो हमने स्टडी किया है उसमें हम ट्रेडिंग बिहेवियर पे भी हमने काफ़ी रिसर्च फाइंडिंग्स दी हैं कि काफ़ी 3-4 साल की ट्रेडिंग करने के बाद भी कंटिन्यूड लॉसेस में रिटेल बहुत सारे लोग हैं। तो ये जनरल मीडिया जनरल पब्लिक को समझने की बात है कि क्या यदि वो उस मार्केट के लिए तैयार नहीं हैं ठीक तरह से तो क्या उन्हें उसमें जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लॉसेस कंटिन्यूसली उन लोगों को मिल रहे हैं, तो क्या वो उसमें रहना चाहेंगे जहां उनके बार बार आने से भी उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखा।

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Hello and welcome. You're watching In the Club. I am Susan. What happens when two cops see justice through completely different eyes? Starring Kareena Kapoor Khan and Prithviraj Sukumaran Daira explores this clash through a gripping investigative thriller inspired by true events as a shocking crime sparks nationwide outrage to contrasting approaches to law and justice collide, raising difficult questions about duty, punishment and the system itself. Take a look.
1: इधर क्यों लाए सर?
2: बताता हूँ क्यों लाए इधर.
3: ये तीसरी बार है ना आप और डीसीपी रमन कुमार ने इससे पहले भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन फेस की है.
2: एक्यूज ने मौका ढूंढा और एस्केप करने की कोशिश की.
3: क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान
2: उन्होंने हमारे टीम पर अटैक किया
3: और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया.
4: ये एक प्लांट पुलिस एनकाउंटर था.
5: What happens when two officers wear the same uniform but see justice through completely different eyes?
6: Accused 2 साल से इसी रूट पर था.
3: 2 साल 600 किलोमीटर और रोकने वाला कोई नहीं.
7: ऐसे केसेस में 100 में से 99 बार लड़की घर वापस आ जाती है सर.
2: और वो एक बार

0: as two senior police officers caught on opposite sides of a complex
1: case.
2: It may get slippery, Raman.
3: बताना अपनी माँ को क्या किया तुमने.
0: Inspired by true events, the film unfolds in the aftermath of a shocking crime scene that sparks nationwide outrage.
3: उनकी story over है.
4: कहाँ over? Court कचहरी के चक्कर, हमारा वकील, उनका वकील, अभी तो शुरुआत है.
0: What follows is a chain of events and two investigations that force the officers to confront difficult questions about law, duty, justice and punishment.
3: और escape करने की कोशिश की.
5: क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान
3: उन्होंने हमारे टीम पर अटैक किया
5: और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया.
6: सर, क्या ये एक प्लांट पुलिस एनकाउंटर था?
0: करीना प्लेज डीसीपी अजूनी कोहली, वाइल पृथ्वीराज पोर्ट्रेज डीसीपी रमन कुमार.
7: घर वापस आ जाती है सर,
3: और वो एक बार.
0: ऑल्दो बोथ सर्व द सेम सिस्टम, देयर कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस टू जस्टिस सून पुट देम एट ऑड्स.
5: 17 साल का होने वाला था 4 महीने बाद.
2: इट मे गेट स्लिपरी रमन.
3: बताना अपनी माँ को क्या किया तुमने.
0: इंटरेस्टिंगली, Dara also brings the complicated issue of juvenile justice into focus.
3: एक अक्यूज़ तो पतली गली से निकल गया.
5: वो पतली गली नहीं, juvenile protection law है.
3: Juvenile जो rape और murder कर सकता है, उसकी protection.
0: The film features an ensemble cast, including Jitendra Joshi, Shiti Jog, Kawaljeet Singh, Sandeep Kulkarni, and Trupti Khamkar. Kareena Kapoor Khan was last seen in the action thriller Singham Again, which released on November 1st, 2024.
8: कलयुग है अपनी कलयुग, इस बार रावण जीतेगा.
5: सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती.

0: चालू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: सर, एफएनओ का भी जो पूरा डिटेल विस्तृत डेटा सेबी के द्वारा पब्लिश किया गया है सर, उसके हिसाब से सर आपको क्या लगता है सर, कौन सी ऐसी बड़ी फाइंडिंग है जो लोगों को भी समझनी चाहिए और सेबी ने भी अच्छे से समझी है सर?
1: नहीं, जो आप एफएनओ स्टडी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, नहीं उसमें तो सारे बातें बहुत स्पष्ट हैं, और इस बार तो जो हमने स्टडी किया है उसमें हम ट्रेडिंग बिहेवियर पे भी हमने काफ़ी रिसर्च फाइंडिंग्स दी हैं कि काफ़ी 3-4 साल की ट्रेडिंग करने के बाद भी कंटिन्यूड लॉसेस में रिटेल बहुत सारे लोग हैं। तो ये जनरल मीडिया, जनरल पब्लिक को समझने की बात है कि क्या यदि वो उस मार्केट के लिए तैयार नहीं हैं ठीक तरह से, तो क्या उन्हें उसमें जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लॉसेस कंटिन्यूसली उन लोगों को मिल रहे हैं, तो क्या वो उसमें रहना चाहेंगे जहां उनके बार बार आने से भी उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा।

आज ये कॉम्बो एक पूरा मिला हुआ देखा, जिसमें पंजाब सरकार भगवंत मान घबराया हुआ और एक शराबी सीएम जो देसी पीता था, आजकल मुझे पता लगा है वो बाहर का ब्रांड आता है जिसमें ऊपर टल्ली बजती है, वो टल्ली वाली शराब पी के ये टल्ली रहता है और ऐसे हुक्म देता है, और इसकी वाइफ और इसकी बहन लूटने का काम कर रहे हैं, कई चीजें केजरीवाल जैसे। आप शर्म आती है मुझे यार, जिस पंजाबी, एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। ये लूटपाट का पैसा है, ये ज्यादा हदम नहीं होगा भगवंत मान। याद रखना, जो आज तुमने शुरुआत की है ना, तेरे को जहां से तू निकला है उसी जगह अंदर छोड़ के आऊंगा।

उन्हीं के दौरे हुकूमत में मार्गरेट अलवा जी ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा है कि कांग्रेस के अंदर किस प्रकार नेताओं को निपटाया जाता था। यह मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा 2008 में कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें ऑक्शन के लिए थी, मेरिट्रिकोसी के लिए, मतलब मेरिट्रिकोसी के लिए नहीं थी। नटवर सिंह साहब ने खुद लिखा है, और इस समय के संदर्भ में तो राहुल गांधी जी को बहुत कान खोल के सुनना चाहिए, अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ पेज नंबर 103 पे उन्होंने लिखा है कि डिनर पार्टी में मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि मुझे विदेश मंत्रालय दिया जाएगा और अर्जुन सिंह जी को एचआरडी। फिर सोनिया गांधी जी ने मुझे बुलाया और ये मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा शी टोल्ड मी दैट शी वॉज अंडर ग्रेट प्रेशर फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स इंक्लूडिंग फ्रॉम अमेरिकन्स नॉट टू अपॉइंट मी एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अर्थात सोनिया गांधी जी नटवर सिंह जी से, जो कांग्रेस के विदेश मंत्री रहे हैं, उनसे कह रही हैं कि मेरे ऊपर बहुत भारी दबाव है और अमेरिकी लोगों का दबाव है कि आपको विदेश मंत्री नहीं रहना है। और आप सोचिए ये लोग आकर आज यह बताने का प्रयास करते हैं।

0: co-founder of Sudvayu Technologies. Me and my team, headed by Mr. Amit Bhatnagar, who is an ex-IITN, we are working for air pollution problem.
1: जब हमने शुद्ध वायु व्हीकल माउंटेड एयर प्यूरिफायर पे काम करना शुरू किया तो हमारे ध्यान में यही था कि हमें एक डिप्लॉयबल, एक फिजिबल और एक स्केलेबल सोल्यूशन पे काम करें। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये डेवलप किया है जो कि बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी, बिना किसी बिजली के और बिना किसी परमानेंट स्ट्रक्चरल या किसी भी फिटिंग के ये रेट्रोफिट डिवाइस हमने बनाया है जो कि गाड़ी के ऊपर आप खुद से लगा सकते हैं और खुद से उतार सकते हैं। जब दिल्ली में पॉल्यूशन है तो उस टाइम पे आप खुद से लगा सकते हैं, जब पॉल्यूशन नहीं है तो आप उतार के अपने स्टोर में रख सकते हैं जो कि हार्डली एक 1 square feet का स्पेस लेगा। कि हमने पायलट किया था गुरुग्राम म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी की 50 cars पे हमने इसको लगाया था। जो अगर BS4 व्हीकल की बात कर रहे हैं तो उसका जो PM एमिशन नॉर्म होता है वो 25 मिलीग्राम पर किलोमीटर होता है और हमारा डिवाइस जो है वो 50 मिलीग्राम पर किलोमीटर कैप्चर कर रहा है। तो कहने का मतलब जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि व्हीकल पॉल्यूशन फैलाता है, व्हीकल पॉल्यूटर है, लेकिन विद द सुदवायु डिवाइस व्हीकल एक नेट एयर प्योरीफायर में कन्वर्ट हो जा रहा है। कहने का मतलब हम केवल व्हीकुलर एमिशन को टारगेट नहीं कर रहे, हम किसी भी सोर्स से पॉल्यूशन हो रहा हो, क्योंकि दिल्ली में व्हीकल से पॉल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेटली 20% है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद रोड डस्ट है, उसके बाद इंडस्ट्रियल बर्निंग है, उसके बाद रेसिडेंशियल बर्निंग है। तो सब मिला के तो हम लोग सबको टारगेट कर रहे हैं, केवल व्हीकुलर एमिशन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो हम कहने का मतलब यही है कि एक पॉल्यूटर को हम एयर प्योरीफायर में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि दिल्ली के लिए बहुत कारगर हो सकता है।
0: इस टेक्नोलॉजी में हम कोई भी फैन, इलेक्ट्रिसिटी, मोटर, बैटरी कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। ये जो ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में एयर प्रेशर, एयर काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, जब गाड़ी चलती है तो अगर इवन वो गाड़ी 40 की स्पीड से भी चल रही है तब भी अगर आप अपना हाथ बाहर निकालेंगे तो आपको एयर प्रेशर फील होगा। तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वो एयर प्रेशर अवेलेबल है। तो उसी प्रिंसिपल को यूज करके हमने ये एयर फिल्टर इनोवेट किया है। इसको जस्ट गाड़ी के ऊपर लगाना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। उसी एयर प्रेशर से एयर अंदर जाती है, कार्बन पार्टिकल्स को कैप्चर करती है, जिसमें डस्ट प्री फिल्टर भी लगाया हुआ है जिसमें जो लार्जर पार्टिकल्स हैं उनको कैप्चर किया जाता है। मेन फिल्टर में जब एयर आती है तो PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स जो सबसे ज़्यादा हजार्डस हैं उनको कैप्चर करती है और क्लीन एयर बाहर निकलती है।
1: जब व्हीकल से एसोसिएटेड कोई भी सॉल्यूशन आता है या टेक्नोलॉजी आती है तो व्हीकल ओनर्स अपनी व्हीकल से इमोशनली अटैच हैं क्योंकि वो कोई भी चीज़ उसमें फिट करने से 10 बार सोचते हैं। तो हमने उस सोच के साथ इसको डेवलप किया है कि इसमें हमने ऐसा नीचे ऐसा प्रोविजन रखा है बॉटम में अपने डिवाइस के कि ये एक सिंगल स्क्रैच, एक सिंगल पिन भी गाड़ी के छत पे कोई एक सिंगल, हम ना तो कोई छेद कर रहे हैं, ना कोई ड्रिलिंग कर रहे हैं फिटिंग के लिए, ना तो इससे कोई हम स्क्रैच आने का कोई भी उसमें चांस रख रहे हैं।
0: इट इज सेल्फ इंस्टॉलेबल, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे लेडी हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई भी इसको लगा सकता है। और ये एम्बिएंट एयर, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सॉल्यूशन जो है वो स्टैटिक है, ये हम एग्जिस्टिंग जो गाड़ियां ऑलरेडी रोड पे चल रही हैं हम उन गाड़ियों को एयर प्यूरिफायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी नोवल एंड बिगर इनोवेशन देन एनी अदर अवेलेबल टेक्नोलॉजी।
1: अप्रोक्सीमेटली हम लोग 7,000 rupees का जो कॉस्टिंग है वो हम लोग कर रहे हैं और हम टारगेट जो कर रहे हैं कि जो हम इसको दूर करने के लिए हम सेल प्राइस जिसको बोल सकते हैं या जो भी, तो वो अप्रोक्सीमेटली हम 10K के आसपास अभी रखते हैं क्योंकि इसके साइजेज वेरी करते हैं गाड़ी के साइज के हिसाब से। तो हम इसको 8,000 में, 10,000 में और 12,000 में अभी कार्स के लिए रखे हुए हैं और बसेस में हम अप्रोक्सीमेटली इसको 22,000 का अभी कर रहे हैं।
0: जब मूविंग होगा तो लोगों में अवेयरनेस आएगी और पॉल्यूशन इज समथिंग जो लोगों की हेल्थ को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है और लोगों को अभी रियलाइज नहीं है। तो उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए भी ये सॉल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि गाड़ियों में लगे और लोगों तक पहुंचे।
1: अगर दिल्ली की एयर को साफ करना है तो हमें एक डेमोक्रेटिक और एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन पे जाना होगा।

0: मेरा नाम संजीव कुमार यादव है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ और मैं शुद्ध वायु टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में एज ए टेक्नोलॉजी हेड एंड फाउंडिंग मेंबर मैं इसमें काम कर रहा हूँ।
1: I am BP Bhatnagar. I am biotechnologist and master's in business administration. I am a co-

0: Do you take your creatine?
1: Water.
0: लेते ही नहीं है क्रिएटिन पीते हैं माइनस अर्पित क्या कॉफी के साथ क्रिएटिन ले सकते हैं
2: नहीं
0: आप वीडियो देखिए फिर बात करिए So creatine works. That part is settled. The most researched supplement out there. इसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं. So let's tell you all about the right way to take creatine in this video, which has been verified by Dr. Anshuman Kaushal, senior bariatric and robotic surgeon. So, सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी बॉडी को एक्चुअली कितना क्रिएटिन चाहिए. इसमें दो तरीके के कैलकुलेशन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी डोज ले रहे हैं क्या आप लोड कर रहे हैं क्रिएटिन को या फिर आप रेगुलरली मेंटेनेंस डोज के ऊपर चल रहे हैं. पहले बताते हैं जो लोडिंग डोज होती है वो क्या होती है. Your body weight in kg into 0.3. That's the loading dose. Or agar aap maintenance dose de rahe hain, so your body weight into 0.03. अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपको लगभग 21 ग्राम्स चाहिए होगा लोडिंग के लिए और 2 ग्राम्स चाहिए होगा एवरी डे फॉर मेंटेनेंस. देखिए लोडिंग फेज इज लाइक अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी टू फिल योर मसल स्टोर्स एज फास्ट एज पॉसिबल. लेकिन क्या सबको ये लोडिंग फेज करना चाहिए या आप मेंटेनेंस डोज से ही काम चला सकते हैं. इस पे स्टैटिस्टिक देखिए. एक लैंडमार्क स्टडी हुई थी 1996 में हल्टमन स्टडी जिसने एग्जैक्टली ये दो तरीके जो हैं क्रिएटिन लेने के वो टेस्ट करे. जो लोडिंग फेज था उसमें उन्होंने खाए 20 ग्राम्स एवरी डे स्प्लिट इनटू अबाउट 4-5 डोजेस पर डे फॉर अबाउट 6 डेज एंड देन जो ग्रेजुअल केस था उसमें उन्होंने 28 दिन तक 3 ग्राम्स खाया. दोनों ही केसेस में सैचुरेशन इन द बॉडी वॉज 20%. द सेम अगर आप बहुत सारा क्रिएटिन लोड कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी उसे ले ना पाए. अच्छा अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या मेन और विमेन की क्रिएटिन रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है. द शॉर्ट आंसर टू दैट इज नो. द डोज डज नॉट चेंज. इट इज डिफाइंड बाय योर बॉडी वेट बट देयर इज अ नुआंस वर्थ नोइंग स्पेशली फॉर ऑल द लेडीज. विमेन्स बॉडी एक्चुअली स्टार्ट विद रफली 70-80% लोअर नेचुरल क्रिएटिन स्टोर्स देन मेन. अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं कि कब खाना है क्या खाने के साथ लेना है खाली पेट लेना है व्हेन टू हैव इट. वेल नो रूल रियली सेज दैट यू मस्ट हैव फूड विद क्रिएटिन इफ इट अपसेट्स योर स्टमक. सो जनरली टॉलरेंस के लिए बोला जाएगा कि आप थोड़ा एम्प्टी स्टमक पे ना खाएं कुछ खाने के बाद अगर लेंगे सो योर स्टमक विल बी एबल टू टेक इट बेटर. सबसे इंपॉर्टेंट बात किन लोगों को क्रिएटिन पूरी तरीके से अवॉइड करना है. वेल इस पर एक लिस्ट है जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाले प्लीज रीड देम वेरी केयरफुल. तो हेल्थ वेल्थ प्रोडक्ट क्या है. देखिए क्रिएटिन इज एन एक्सलेंट सप्लीमेंट. अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं बॉडी वेट के हिसाब से तो 3-5 ग्राम्स फ्लैट इज एन ओके थिंग बट चेक विद योर डॉक्टर बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट डोज यू शुड टेक. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर टेकिंग क्रिएटिन इज टू चेक वेदर और नॉट इट इज monohydrate. Other thing to remember is that check whether the brand is third party verified.

0: पहले तो जो पर्सन टू पर्सन पैसा ट्रांसफर होगा उस पर कोई चार्ज नहीं है, उसके बाद इंडिविजुअल कंज्यूमर्स पे चार्ज तब तक नहीं होगा जब तक आप एक सीलिंग जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे। जहां तक मैं समझ चुका हूं, इस यूपीआई सिस्टम को चलाना जो है वो सस्ता नहीं है। जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है उसको हम ठीक तरह से अप्रिशिएट नहीं करते। आम लोगों को इसका जो ये जो चार्जेस हैं, इसके चार्जेस आम लोगों पर ना लगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कोशिश करनी चाहिए।
1: ग्राहक के ऊपर एक भी भार नहीं पड़ेगा। सेलिंग प्राइस निर्धारित होने के बाद ही ये मर्चेंट के ऊपर लगेगा। हमको अगर उदाहरण के तौर पर 51 रुपए का माल हम खरीद रहे हैं, हमको 51 रुपए प्लस 0.4% देने की जरूरत नहीं है, हम 51 ही देंगे। ये टैक्स मर्चेंट पे पड़ेगा और वो मर्चेंट पे पड़ेगा जो जिसकी हर माह की यूपीआई इस्तेमाल करने के आधार पर 1 लाख से ज्यादा पेमेंट्स हो रही है, जो मैंने आपको बताया केवल 4%। ये कभी भी किसी तरीके से आप ग्राहक और सामान्य हमारा जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके ऊपर आप लागू नहीं कर सकते।

0: How do you take your creatine?
1: Water.
0: लेते ही नहीं है क्रिएटिन पीते हैं
1: माइनस
0: अर्पित क्या कॉफी के साथ क्रिएटिन ले सकते हैं
2: नहीं
0: आप वीडियो देखिए फिर बात करिए
1: So creatine works. That part is settled. The most researched supplement out there. इसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं. So let's tell you all about the right way to take creatine in this video, which has been verified by Dr. Anshuman Kaushal, senior bariatric and robotic surgeon. सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी बॉडी को एक्चुअली कितना क्रिएटिन चाहिए. इसमें दो तरीके के कैलकुलेशन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी डोज ले रहे हैं. क्या आप लोड कर रहे हैं क्रिएटिन को या फिर आप रेगुलरली मेंटेनेंस डोज के ऊपर चल रहे हैं. पहले बताते हैं जो लोडिंग डोज होती है वो क्या होती है. Your body weight in kg into 0.3. That's the loading dose. Or agar aap maintenance dose de rahe hain, so your body weight into 0.03. Agar aapka vazan 70 kilo hai, to aapko lagbhag 21 grams chahiye hoga loading ke liye aur 2 grams chahiye hoga every day for maintenance. Dekhi, loading phase is like a short-term strategy to fill your muscle stores as fast as possible. Lekin kya sabko ye loading phase karna chahiye? या आप मेंटेनेंस डोज से ही काम चला सकते हैं. इस पे स्टैटिस्टिक देखिए. एक लैंडमार्क स्टडी हुई थी 1996 में हल्टमन स्टडी जिसने एग्जैक्टली ये दो तरीके जो है क्रिएटिन लेने के वो टेस्ट करे. जो लोडिंग फेज था उसमें उन्होंने खाए 20 ग्राम्स एवरी डे स्प्लिट इनटू अबाउट 4 to 5 डोजेस पर डे फॉर अबाउट 6 days. एंड देन जो ग्रेजुअल केस था उसमें उन्होंने 28 दिन तक 3 ग्राम्स खाया. दोनों ही केसेस में सैचुरेशन इन द बॉडी वॉज 20%. The same. अगर आप बहुत सारा क्रिएटिन लोड कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी उसे ले ना पाए. अच्छा, अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या मेन और विमेन की क्रिएटिन रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है. द शॉर्ट आंसर टू दैट इज नो. द डोज डज नॉट चेंज. इट इज डिफाइंड बाय योर बॉडी वेट. बट देयर इज अ नुआंस वर्थ नोइंग स्पेशली फॉर ऑल द लेडीज. विमेन्स बॉडी एक्चुअली स्टार्ट विद रफली 70-80% लोअर नेचुरल क्रिएटिन स्टोर्स देन मेन. अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं कि कब खाना है. क्या खाने के साथ लेना है, खाली पेट लेना है, व्हेन टू हैव इट. वेल, नो रूल रियली सेज दैट यू मस्ट हैव फूड विद क्रिएटिन इफ इट अपसेट्स योर स्टमक. सो जनरली टॉलरेंस के लिए बोला जाएगा कि आप थोड़ा एम्प्टी स्टमक पे ना खाएं. कुछ खाने के बाद अगर लेंगे सो योर स्टमक विल बी एबल टू टेक इट बेटर. सबसे इंपॉर्टेंट बात, किन लोगों को क्रिएटिन पूरी तरीके से अवॉइड करना है. इस पर एक लिस्ट है जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाले, प्लीज रीड देम वेरी केयरफुली.

0: जो सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: यार लोन भूल गया मैरी।
5: इट्स
4: जस्ट अ गुड बैंक ना।
6: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
6: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
7: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: which was very candid, very real, very humble. And luckily, most of the semiconductor industry have lots of people of Indian origin. आप जिस भी कंपनी में जाओ, CTO तो इंडियन ही मिलेगा आपको, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर तो इंडियन ही मिलेगा. बहुत सारे इंडियन, उनका अपने को हेल्प मिली. दे गाइडेड अस थ्रू आउट दिस प्रोग्राम. ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम हैज बीन बेसिकली डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री गाइडेड द एंटायर थिंग. सो दैट रियली हेल्प. इट वॉज नॉट डन इन अ वेरी कन्वेंशनल वे.
1: सो इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, वुड यू से?
0: एज इन
1: the entire industry leading this entire move?
0: Nahi, वैसे तो our government has this entire thing. So many sectors are basically, we believe in taking inputs from people who are actually doing the work. So that is one of the hallmarks of

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: जो इलेक्शन कमीशन का शायद कोई इस संबंध में ऑर्डर आया है उसको संज्ञान में लेकर उसको पढ़ के और उसके ऊपर फिर प्रतिक्रिया देना बनता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का इस तरह से चुनाव चिन्ह के ऊपर रोक लगाना ये लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है।
1: There's an order from the ECI. They have directed the symbol and the name of the Trinamool Congress, the political party, that is to be freezed. This is what we had said from long. Mamata Banerjee, once she loses the election, once Trinamool Congress loses the election, there will be no relevance of the Trinamool Congress party. There will be no existence of the Trinamool Congress party, neither their symbol. That is what precisely has happened.

0: एक्टिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
2: यार लोन भूल गया मैरी।
3: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
4: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
5: There's nothing small about
6: us. Ujjivan, nothing small about us.

0: छह साल का प्रोग्राम था, चार साल में कंप्लीट हो गया. सेम थिंग विल हैपन इन दिस.
1: सो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन,
0: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक अगर फैब लगती है तो देर आर अबाउट 10, लाइक मल्टीप्लायर ऑफ 10, एज इन देर आर मोर देन 100 इकोसिस्टम पार्टनर्स हु ज्वाइन दैट वर्क. यानी नॉर्मली किसी भी एक इंडस्ट्री के साथ कुछ लोग जुड़ते हैं, राइट? कुछ इंडस्ट्रीज में ज्यादा लोग जुड़ते हैं. रेलवे में फॉर एग्जाम्पल 5 इज द फैक्टर, सेमीकंडक्टर में 10 इज द फैक्टर. सो दैट मीन्स देर आर सो मेनी जॉब्स विच आर गेटिंग क्रिएटेड इन द इकोसिस्टम. अगर एक फैब में 100 लोग हैं, बाकी में उससे 10 गुना ज्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं आसपास के इकोसिस्टम में. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. आई कैन वेरी कंफर्टेबली सी 1 लाख प्लस जॉब्स गेटिंग क्रिएटेड. उससे ज्यादा ही होगा, काफी ज्यादा होगा उससे.
1: तो आपका टाइमलाइन काफी है,
0: ये 6 साल का पीरियड.
1: 6 साल के पीरियड में मोबाइल फोन्स, मिस्टर वैष्णव, आर नाउ इंडियाज सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम, विच इज अहेड ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी ऑल्सो
0: एंड पेट्रोलियम.
1: And petroleum, with electronics manufacturing crossing $130 billion.
0: Third rank in the overall goods already. From 9th rank 10 years ago, it is now third ranked.
1: So can India's semiconductor story replicate that?
0: Yes, it can. Agar aap yahan pe jaake dekhoge, bahut sare products jo India mein designed hai, India mein manufactured hai, they are now being exported to Japan, to Europe, to US. One of the stalls, they showed me a product which is now being exported to China. So that just with the foundation layer that we have been able to create that much competence in the industry, that much confidence in the industry. So of course we'll see a very high growth period.

0: सिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम की आपने चर्चा की, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में 24 स्टार्टअप्स विद $83 million फंडिंग चल रही है. 15 ऑफ देम हैव गॉन अप टू $118 million इन वीसी फंडिंग. अगर इस तरह का कन्वर्जन होता है जो शुरू करती है सरकार और उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, तो क्या ये आप उसको भी एक पिलर मानते हैं?
1: बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है. फर्स्ट फेज में सेमिकॉन 1.0 में ऑनेस्टली वी डिड नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 1 वीसी फंडिंग. We thought that yes, fine, there will be some people who will come and start their deep tech, because this is deep tech startup. This is not like a routine startup. This is very complex, very difficult. Lot of perseverance is required. Lot of talent, very deep talent is required. So we didn't expect that, but we got 20 VC funding. We got 105 startups getting into it, but 20 getting VC funding. So this time we have scaled up our ambition, and now that ecosystem is there. Today the India Deep Tech Alliance was making the announcement. They are already ready with $3 billion investment in India. They are ready with it. They are saying that already, like, they started with some 8 partners. Now they are having about 20 partners, and there are many more partners willing to join them. Many more funds willing to be a part of the India Deep Tech Alliance. So that journey is behind us now. So the future journey is going to be much more bigger. We are targeting in Semicon 2.0, 6 years period, we are targeting 200 deep tech chip design companies to be well established in the country.
0: आपने बताया कि बहुत सारे एरा पीछे रह गया, भारत आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसी में इंडिया में करेंटली 40 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है.
1: 28 नैनोमीटर.
0: आपने उसको एक गोल सेट किया है 7 नैनोमीटर टू 3 नैनोमीटर विद इन 8 years. लेकिन जिन देशों ने इसको अचीव किया है सर, उन्होंने डेकेड्स लगाए हैं, बहुत सालों लगाए हैं, लेकिन आपने 8 साल का बोला है कि 8 साल के अंदर भारत ये अचीव कर लेगा, तो आपको ये कॉन्फिडेंस किस इशू पर आ रहा है?
1: देखो, जितना हमने सेमिकॉन 1.0 में अचीव किया 4 साल में, 4.5 साल में, उतना कई देशों ने 20 साल में अचीव किया था. तो देश में पॉलिसी की सर्टेनिटी है, टैलेंट है, क्लियर पॉलिटिकल विल है, और दुनिया भर में इंडिया को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखा जाता है.

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: EU सोच बदलो और बैंक भी।
3: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है,
4: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
5: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
6: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
7: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
8: अब मैं क्या ही बोलूं?
9: परिवार अटूट भरोसा।
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
10: Maddie, I need to open a savings account.
11: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
10: स्मॉल बैंक?
11: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
10: Okay.
11: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: How do you take your creatine?
1: Water.
0: लेते ही नहीं है क्रिएटिन पीते हैं
1: माइनस
0: अर्पित क्या कॉफी के साथ क्रिएटिन ले सकते हैं
2: नहीं
0: आप वीडियो देखिए फिर बात करिए So creatine works. That part is settled. The most researched supplement out there. इसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं. So let's tell you all about the right way to take creatine in this video, which has been verified by Dr. Anshuman Kaushal, senior bariatric and robotic surgeon. So, सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी बॉडी को एक्चुअली कितना creatine चाहिए. इसमें दो तरीके के कैलकुलेशन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी डोज ले रहे हैं. क्या आप लोड कर रहे हैं creatine को या फिर आप रेगुलरली मेंटेनेंस डोज के ऊपर चल रहे हैं. पहले बताते हैं जो लोडिंग डोज होती है वो क्या होती है. Your body weight in kg into 0.3. That's the loading dose. और अगर आप maintenance dose दे रहे हैं, so your body weight into 0.03. अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपको लगभग 21 grams चाहिए होगा loading के लिए और 2 grams चाहिए होगा every day for maintenance. देखिए loading phase is like a short-term strategy to fill your muscle stores as fast as possible. लेकिन क्या सबको ये loading phase करना चाहिए या आप मेंटेनेंस डोज से ही काम चला सकते हैं. इस पे स्टैटिस्टिक देखिए. एक लैंडमार्क स्टडी हुई थी 1996 में हल्टमन स्टडी जिसने एग्जैक्टली ये दो तरीके जो हैं क्रिएटिन लेने के वो टेस्ट करे. जो लोडिंग फेज था उसमें उन्होंने खाए 20 ग्राम्स एवरी डे स्प्लिट इनटू अबाउट 4 to 5 डोजेस पर डे फॉर अबाउट 6 डेज. एंड देन जो ग्रेजुअल केस था उसमें उन्होंने 28 दिन तक 3 ग्राम्स खाया. दोनों ही केसेस में सैचुरेशन इन द बॉडी वॉज 20%. The same. अगर आप बहुत सारा क्रिएटिन लोड कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी उसे ले ना पाए. अच्छा अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या मेन और वुमेन की क्रिएटिन रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है. द शॉर्ट आंसर टू दैट इज नो. द डोज डज नॉट चेंज. इट इज डिफाइंड बाय योर बॉडी वेट. बट देयर इज अ नुआंस वर्थ नोइंग स्पेशली फॉर ऑल द लेडीज. वुमेन्स बॉडी एक्चुअली स्टार्ट विद रफली 70-80% लोअर नेचुरल क्रिएटिन स्टोर्स देन मेन. अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं कि कब खाना है. क्या खाने के साथ लेना है, खाली पेट लेना है, व्हेन टू हैव इट. वेल नो रूल रियली सेज दैट यू मस्ट हैव फूड विद क्रिएटिन इफ इट अपसेट्स योर स्टमक. सो जनरली टॉलरेंस के लिए बोला जाएगा कि आप थोड़ा एम्प्टी स्टमक पे ना खाएं. कुछ खाने के बाद अगर लेंगे सो योर स्टमक विल बी एबल टू टेक इट बेटर. सबसे इंपॉर्टेंट बात किन लोगों को क्रिएटिन पूरी तरीके से अवॉइड करना है. वेल इस पर एक लिस्ट है जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाले. प्लीज रीड देम वेरी केयरफुल.
3: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
4: You are watching India Today.

0: तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज हम लोगों के साथ हैं और पंचायत बिहार में मेरा पहला प्रश्न यही होगा कि बीजेपी इस बात पर बहुत खुश है कि अंग बंग कलिंग अब तीनों जगह भाई हमारा अपना सीएम हो गया। बिहार एकमात्र हिंदी पट्टी का राज्य था जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था। बीजेपी का सपना तो पूरा हो गया लेकिन जनता का सपना पूरा करने में 150 दिन के इस सफर में आपने क्या ऐसा किया है जो आप जनता को आज बता सके, अपना 100 दिन तो नहीं 150 दिन वाला रिपोर्ट कार्ड पेश करें।
1: जनता की आकांक्षा बहुत बड़ी होती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन पिछले दो तीन चार महीने में लगातार विकास के काम को आगे बढ़ाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन लगातार हमें मिलता रहा है और आज मैं बता सकता हूं जरूर कि नीतीश जी ने बिजली और सड़क पर बहुत काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किए, उसको अब तेज गति से बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। हमारे साथी मंत्री वगैरह आपके बीच में आए होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे, यहां पढ़े, यहां रोजगार मिले और यहीं पर अपने जीवन को उन्नति का रास्ता दे। और इसका एक उदाहरण मैं बताता हूं कि पिछले 150 दिनों में मैंने 700 मॉडल स्कूल बनाए और उस मॉडल स्कूल में जो संरचना खड़ा किया वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज जो लगभग 3.5 लाख बच्चे उस मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका सपना होता था कि हम नेतरहाट में पढ़ाई करें, हम सैनिक स्कूल में जाकर पढ़ें, हम देवघर में रामकिशन मिशन स्कूल में पढ़ें और अभी सिमरतल्ला में हमारा सबसे बेस्ट स्कूल है वहां जाकर पढ़ने का काम करें। हम उस व्यवस्था को हम लोगों ने मॉडल स्कूल में शिफ्ट किया, वहां अच्छे टीचर्स की पोस्टिंग की, साथ ही साथ हमने 2-3 फॉर्मूला वहां क्रिएट कराया। एक, जो बच्चे बाहर जाते थे नीट की तैयारी करने, जेई की तैयारी करने, उनको पूरी व्यवस्था वहां देना शुरू किया और रात के 12 बजे यदि हमारा कोई बच्चा मॉडल स्कूल पढ़ने वाला बच्चा यदि चाहे कि हमको रात के 1 बजे टीचर हमको ट्यूटर की व्यवस्था करे तो सरकार ने विद्यार्थी साथी ऐप दिया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एवरेज रात के 1 बजे 1.5 लाख बच्चे उससे पढ़ाई कर रहे हैं 1 बजे रात को, और संडे के दिन वही बढ़कर 2 लाख बच्चे उससे अटैच हो जाते हैं,
0: रियल डेटा ट्रैक हो रहा है।
1: इसलिए मैं उसका भी पूरा एक मैकेनिज्म हमने बनाया कि वो ओटीपी के माध्यम से उसका पूरा सिस्टम क्रिएट किया है, जब बच्चा उसको ऐप पे जाएगा तो उसको ओटीपी आएगा और 1 मिनट के अंदर उसको शिक्षक उपलब्ध होंगे, ये 24/7 उनको शिक्षक उपलब्ध होते हैं। तो ये पूरी संरचना क्वालिटी एडुकेशन देने का प्रयास हम लोगों ने किया है। और दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में रिकॉर्ड टाइम में बिहार में शिक्षक की कमी रही जबकि नीतीश जी ने लगभग 7 लाख शिक्षकों की बहाली किया, इसके बावजूद जब हम लोगों ने देखा कि डिग्री कॉलेज ब्लॉक में नहीं थे, हमारे पूरे बिहार में 272 डिग्री कॉलेज आजादी के 80 वर्ष में थे, मैंने 15 जुलाई को लॉन्च किया और एक दिन में 211 डिग्री कॉलेज खोला पूरे बिहार में। और उसमें जो समस्या होती थी कि टीचर नहीं होंगे, तो हम लोगों ने 1 महीने के रिकॉर्ड टाइम में 25 जून को इस पूरी व्यवस्था को शुरुआत किया और 1 महीने के रिकॉर्ड टाइम में सभी शिक्षकों की बहाली करके उसको पोस्टिंग देकर और जब मैं स्वयं गया उनसे मिलने, उन शिक्षकों से, तो मुझे खुशी उस दिन हुई कि कोई दिल्ली से, कोई बैंगलोर से, कोई बॉम्बे से नौकरी छोड़कर बिहार आए।
2: सुनने में भी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि बिहार की भूमि में शिक्षा का महत्व इतना है। आपके शिक्षा मंत्री भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बताया कि कैसे जो भवनहीन स्कूल हैं उन लोगों के लिए भी आप लोगों का एक प्लान है। लेकिन मैं यहाँ पर एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले हमेशा ऐसा कहा गया कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से ढाई कदम पीछे चलते हैं, तो एक तो ये कि ढाई कदम क्यों, लेकिन नीतीश कुमार को जब अपना उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई तब भी बताया गया कि वो चाहे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहें बिहार के। अब एक 20 वर्ष का शासन एक ऐसे व्यक्ति का हम देख रहे हैं जिनको सुशासन बाबू कहा गया। आखिर में सवाल भी उठे बहुत सारे, सम्राट चौधरी अपने नेतृत्व में बिहार में ऐसा क्या करना चाह रहे हैं कि ये सम्राट अध्याय रहे, नीतीश अध्याय का एक्सटेंशन नहीं?
1: नहीं, पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं श्वेता जी, बिहार के निर्माण में श्री बाबू कपूरी ठाकुर और नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान रहा है, इसे मैं डिफर नहीं कर सकता हूं। श्री बाबू ने पूरी संरचना खड़ा किया, उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री आए और गए, नीतीश कुमार जी ने डेवलपमेंट का भी काम किया, सामाजिक न्याय का भी काम किया। नीतीश कुमार जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, आज लोग घूम सकते हैं बिहार में, काम कर सकते हैं बिहार में, बिजली गांव में है, पानी गांव में है, सड़क गांव में है। अब क्या है कि हमको तेज गति से बढ़ना है। हम कैसे महाराष्ट्र की गति को प्राप्त करें, हम दिल्ली की गति को प्राप्त करें, कर्नाटक की गति को प्राप्त करें, इसके लिए इंडस्ट्री के सेक्टर में, एडुकेशन के सेक्टर में, और अभी तक राज्य सरकार का लक्ष्य ही नहीं था कि इंडस्ट्री के लिए हम जमीन उपलब्ध करा पाते। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 150 दिन में लगभग 950-1000 के आसपास इंडस्ट्री को जमीन उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया था। और हमारा लक्ष्य है, क्योंकि ये काम जब मैं उप मुख्यमंत्री था, नीतीश जी के साथ काम कर रहा था, तो वित्त मंत्री की हैसियत से ये हमें थोड़ा काम करने का मौका मिला, तो हम लोगों ने इंडस्ट्री के लिए लगभग 13,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करना शुरू किया। क्योंकि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, दुनिया का डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट मान सकता हूं मैं, क्योंकि हमसे पीछे छूट चुका बांग्लादेश, हमसे पीछे छूट चुका इंडोनेशिया, हम डेंसेस्ट पॉपुलेशन में 14 करोड़ की आबादी है, हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं था। मैं पहली बार विधायक जब बना तो बिहार में 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, 13% रेवेन्यू यहां से आता था। मैं जब बजट पेश किया श्वेता जी, वो मेरे लिए सबसे गौरव का दिन था, जब मोदी जी और नीतीश जी के आशीर्वाद से मैं उप मुख्यमंत्री था और बजट पेश कर रहा था, जिस झारखंड में 87% रेवेन्यू, उस झारखंड में का बजट 1,39,000 करोड़ का था और बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का था। ये बदला हुआ बिहार है। आज हम देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाला राज्य है। सिर्फ बिजली सेक्टर को आप देख लीजिएगा, 23,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी देते हैं बिहार के गरीबों, और हमने कभी नहीं देखा कि ये लालू जी को हम सब्सिडी दे रहे हैं, कि तेजस्वी जी को दे रहे हैं, या बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं। हम 2,22,00,000 लोग यहाँ बिजली कनेक्शन लिए, उसमें लगभग 1,92,00,000 डोमेस्टिक यूजर है, 1,92,00,000 परिवार को हम सबको हम 125 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। और इसके साथ साथ लगभग 6,000 करोड़ रुपया बिहार के किसानों को उनके कृषि फीडर के तौर पर मात्र 55 पैसा के रेट से हम बिजली उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम सब्सिडी के माध्यम से किसानों को भी मदद करते हैं, गरीबों को भी मदद करते हैं।
3: लेकिन मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार की एक लेगेसी रही है, और खासकर जब तक वो मुख्यमंत्री रहे 15 साल, खासकर पहले जब जनता दरबार किया करते थे, लोगों से मिलते थे, पटना आते थे लोग उनसे शिकायतें लेके, आपने ऐसा क्या अलग कुछ किया है पिछले 150 दिनों में ताकि जनता की समस्याएं जो है वो कम हो सके? क्योंकि बहुत सारी समस्या आज भी है, लोगों के पास शिकायतें आज भी है।
1: इसमें भी एक अच्छा मैकेनिज्म मैंने लाया। मैं नीतीश जी के साथ काम करता था तो मैं देखता था, एक व्यक्ति उनसे साल में 5 बार मिलता था और एक ही काम लेकर आता और वो पत्र नीचे जाता था। मैंने एक सहयोग कार्यक्रम शुरू किया और वो भी प्रेरणा तब मिली हमको जब मैं मुख्यमंत्री हुआ। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद 4-5 दिन तो लोग बधाई दिए, 5वें-6वें दिन एक एक कागज थमाते गए और मैंने देखा कि 5 दिन में मेरे पास लगभग 20,000 लोगों का आवेदन था। ये मेरे लिए चैलेंज था। मैंने एक कार्यक्रम की कल्पना की, सहयोग कार्यक्रम। पूरे राज्य में यह कार्यक्रम चलाया जाता है और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक लगभग 8.5 लाख आवेदन आए हैं हमारे राज्य में और 8.5 लाख आवेदन में से 96% आवेदन का निष्पादन हमने किया। और उस आवेदन में क्या कार्रवाई है यह सबसे मिराकल है। जैसे आपने कोई आवेदन दिया कि हमारे घर में बिजली कनेक्शन नहीं है, पानी कनेक्शन नहीं है, हमारा जमीन का डिस्प्यूट है, 10 दिन तक यदि ऑफिसर ने कार्रवाई नहीं किया, मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से 11वें दिन एक नोटिस जारी होता है उस पदाधिकारी को, उस कर्मचारी को, कि इसका आदेश पारित कीजिए आप। उनको मैं सलाह नहीं देता हूं, उनको कहता हूं कि आप आदेश पारित करें। 20 दिन तक यदि उसने आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया, हम दूसरा नोटिस मुख्यमंत्री कार्यालय से देते हैं।
0: चलिए ठीक है, अब इससे तो जनता से बात करेंगे कि कितना
1: पूरा कर लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा 25 दिन के ऊपर उसका तीसरा नोटिस आता है और अभी तक लगभग 12,000 लोगों को नोटिस गया लेकिन कोई पदाधिकारी कर्मचारी ऐसा नहीं मिला हमको जो 30 दिन पार करे, क्योंकि 30 दिन के बाद वो स्वतः निलंबित हो जाएगा किसी को आदेश देने।
0: मुख्यमंत्री जी, अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है बिहार में, तो क्या वजह रही कि जो सीट 3 दशक से ज्यादा के वक्त से बीजेपी के पास थी, जो आपके मौजूदा अध्यक्ष नितिन नवीन जी की सीट है, बांकीपुर सीट ही बीजेपी हार गई जबकि सारे लोगों ने ताकत झोंकी। अब विपक्ष कह रहा है कि ये रेफरेंडम है।
1: देखिए
0: सम्राट चौधरी पर रेफरेंडम है
1: बांकीपुर की जनता, ये तो जनता तय करती है। 243 सीट पर चुनाव हुए, 202 सीट हम जीत कर आए, चाहे वो अररिया जिला का वोट हो, भागलपुर जिला का वोट हो, बक्सर जिला का वोट हो, सासाराम का हो, हाजीपुर का वोट हो, ये तो जनता तय करती है। एक सीट चुनाव तय नहीं करता है। लेकिन विधायक जी है, विधायक काम करें, इसमें क्या दुमत है। 243 विधायक है, सबको काम करने का अधिकार है, सब काम करें।
0: लेकिन वो क्या रही बांकीपुर की, आपको क्या लगता है?
1: देखिए, समय और परिस्थिति, कुछ हो सकता है हम लोगों के निर्णय गलत हुए हों, इससे मैं डिफर नहीं करता।
0: जैसे
1: मैंने कहा, ये समीक्षा का विषय है। मेरा ये मानना है कोई डिसीजन हम लोगों से गलती हुई होगी, जनता को लगता होगा कि इससे अच्छा डिसीजन करना चाहिए था। जनता जो मालिक है उसको कुछ अच्छे नहीं लगे होंगे, इसलिए हो सकता है।
2: यूजीसी का मुद्दा बैकफायर कर रहा है, लग रहा है।
1: मैं इस पर तो नहीं कह रहा हूं, मेरा यह मानना है ये जनता मालिक है, कभी जिताती है कभी हराती
2: नहीं
1: है।
2: पर आप ये महसूस कर रहे हैं ना कि जिस अगड़ी जाति को आपका वोट बैंक कहा जाता था उनमें नाराजगी रही?
1: भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर तो राजनीति नहीं करती है, लेकिन बिहार की जनता का आशीर्वाद एनडीए को मिला, इससे मैं डिफर नहीं।
3: तो क्या बांकीपुर सम्राट चौधरी के शासनकाल पर आपके गवर्नेंस पर रेफरेंडम था या नहीं?
1: देखिए, एक चीज समझिए, किसी एक व्यक्ति या किसी के कहने से कुछ होता नहीं। ये लोकतंत्र है।
3: वो दिन भर आप ही पर कहते रहते हैं
1: भाई, ठीक है, उसको व्यक्तिगत मेरा कोई मामला नहीं है, ना हमको जवाब देने का जरूरत है। 243 विधायक के कितना का जवाब दूंगा मैं। मेरा ये मानना है बिहार लोकतंत्र की धरती है, यहां जिसके पास 122 एमएलए होंगे वही सरकार चलाएगा। एक व्यक्ति के खिलाफ करने से बिहार की राजनीति नहीं बदलती। बिहार 122 हम लोगों को, हमारी गठबंधन की सरकार को समर्थन प्राप्त है, हम लोग जनता का काम कर रहे हैं।
4: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
5: Five distinct faces, one common purpose. India informed and ahead, where the South finds a voice. Super Six. Sharp questions, zero distractions.
6: You also speak of poor children. Kangana ji, one can always draw analogies sitting high in ivory towers.
5: To the point. The nation's agenda, nothing else matters.
7: There are some who say Pakistan may not be on the verge of breaking. Our Pakistan army is unable to control the situation.
5: India first. Where decades of experience speaks.
8: So you want to raise your voices, but what do you want to see?
5: News Today. Exclusives that shape the headlines.
9: Southern states all unite saying that this is unfair on them.
5: News Track. Every defining moment. Every story that matters. The team that always speaks for you. Because you matter.

0: Hello and welcome. You're watching In the Club. I am Susan. What happens when two cops see justice through completely different eyes? Starring Kareena Kapoor Khan and Prithviraj Sukumaran Daira explores this clash through a gripping investigative thriller inspired by true events as a shocking crime sparks nationwide outrage to contrasting approaches to law and justice collide, raising difficult questions about duty, punishment and the system itself. Take a look.
1: इधर क्यों लाए सर?
2: बताता हूँ क्यों लाए इधर.
3: ये तीसरी बार है ना आप और डीसीपी रमन कुमार ने इससे पहले भी exactly same situation face की है.
2: Accused ने मौका ढूंढा और escape करने की कोशिश की.
3: Crime scene recreation के दौरान
2: उन्होंने हमारे टीम पर अटैक किया
3: और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया.
4: ये एक प्लांट पुलिस एनकाउंटर था.
5: What happens when two officers wear the same uniform but see justice through completely different eyes?
6: Accused दो साल से इसी रूट पर था.
3: दो साल 600 किलोमीटर और रोकने वाला कोई नहीं.
7: ऐसे केसेस में 100 में से 99 बार लड़की घर वापस आ जाती है सर.
2: और वो एक बार फिर से एक फैमिली ने अपनी बेटी खोई है. फिर से
5: Meghna Gulzar's Daira explores this question through a gripping investigative crime thriller that brings Kareena Kapoor Khan and Prithviraj Sukumaran together as two senior police officers caught on opposite sides of a complex
8: case.
3: It
9: may get slippery, Raman.
5: Inspired by true events, the film unfolds in the aftermath of a shocking crime scene that sparks nationwide outrage.
2: Unki story over hai.
10: Kaha over? Court kachehri ke chakkar. Hamara vakil, unka vakil. Abhi to shuruaat hai.
5: What follows is a chain of events and two investigations that force the officers to confront difficult questions about law, duty, justice and punishment.
2: Aur escape karne ki koshish ki.
3: क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान
2: उन्होंने हमारे टीम पर अटैक किया
3: और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया.
4: सर क्या ये एक प्लांट पुलिस एनकाउंटर था?
5: करीना प्लेज डीसीपी अजूनी कोहली व्हाइल पृथ्वीराज पोर्ट्रेज डीसीपी रमन कुमार.
7: घर वापस आ जाती है सर.
2: और वो एक बार
5: ऑल्दो बोथ सर्व द सेम सिस्टम देयर कंट्रास्टिंग अप्रोचेस टू जस्टिस सून पुट देम एट ऑड्स.
3: 17 साल का होने वाला था 4 महीने बाद.
9: इट मे गेट स्लिपरी रमन.
2: बताना अपनी माँ को क्या किया तुमने.
5: इंटरेस्टिंगली Daira also brings the complicated issue of juvenile justice into focus.
2: एक अक्यूज तो पतली गली से निकल गया.
3: वो पतली गली नहीं juvenile protection law है.
2: juvenile जो रेप और मर्डर कर सकता है उसकी प्रोटेक्शन.
5: The film features an ensemble cast including Jitendra Joshi, Shitty Jog, Kawaljeet Singh, Sandeep Kulkarni and Trupti Khamkar. Kareena Kapoor Khan was last seen in the action thriller Singham Again, which released on November 1st, 2024.
11: कलयुग है अपनी कलयुग. इस बार रावण जीतेगा.
3: सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती.